0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाले बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा

0: वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਬੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: पुलिस
3: मिस सीमा।
2: हाँ जी।
3: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हां
2: क्यों? पर मैं
3: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
2: इन्ने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
2: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
3: ओए।
2: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
4: हेलो मम्मा।
2: हाय।
5: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो, सुचेत रहो।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
6: प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर, तो स्टूडियो घड़ी का समा 7:17 से 3 सैकेंड का हो रहा है। तो आओ हुण तुहानू जानकारी दे दईए अज के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवसों बारे। अज यानी कि 28 जुलाई नू लोकां नू हैपेटाइटिस बीमारी बारे जागरूक करने लई पूरे विश्व विच विश्व हैपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दे नाल ही अज एक होर महत्वपूर्ण दिन है जिसका नाम है विश्व कुदरत संभाल दिवस, जिस विच लोकां नू कुदरती स्रोतां नू संभालन ते वातावरण संभालन लई जागरूक किया जाता है। तो आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम च एक होर गीत।

0: अपने आप टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो। कुछ कुछ बातें हैं जो आपका मतलब दोस्त कह देगा कि यार कोई नहीं भाई तू कर लेगा, करता रहे लगा रहे, उसके साथ अपना मन हल्का कर लो, किसी से कॉल पे बात कर लो, किसी से। सोशल मीडिया मैं यूज कम करता था, बट हाँ आई हैड सोशल मीडिया अपने 2 सालों में मैंने बंद नहीं किया था। अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आई यूज टू यूज दैट। तो अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग शेयर कर लो, अपने आप चीजें बेटर हो जाएंगी। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टेस्ट के मार्क्स कुछ भी अपने दिल पे तो लगाना ही नहीं सर। मैंने सोचा हुआ था नंबर कम आएंगे मतलब मुझे पढ़ने की लोड़ है, मैं पढ़ता हूँ, दिल पे नहीं लगाना कि यार क्यों आ गए, मैंने तो पढ़ा था, मैंने मेहनत की थी। अगर आप दिल पे लगाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हाँ हर चीज को कूलली रखो, काम रहो और अच्छा आप करोगे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी गल तुसी सांझी कीती कि पढ़ाई है, पढ़ाई नू मेहनत नाल करो, दिल ते ना लाओ, क्योंकि दिल फिर न्यूरॉन्स वही दिमाग दे सैल सानू वार वार जिहड़ा हैगा वो नैगेटिविटी वाल लै जांदे आ। बड़ी अच्छी गल क्रिश तुसी कीती। एक होर जिहड़ा रुझान अजकल देखण नू मिल रहा कि डमी एडमिशन लै लैंदे ने, रेगुलर क्लासेस स्कूल दे विच नहीं लाउंदे। तुहाडा जिहड़ा हैगा वो किस तरीके दा शेड्यूल रहा फिर?
0: सर हाँ काफी ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो नियुक्ति जर्नी है काफी टफ है और ऑक्सी भी है। तो हाँ डमी एडमिशन कारण काफी दिक्कत आई थी, जब 12th में भी गवर्नमेंट ने शिफ्ट प्रैक्टिस ले लिए थे। हमारी जो ट्यूशन की टाइमिंग थी वो इवनिंग शिफ्ट हो गई थी, 3 to 7। मैं मॉर्निंग अपने स्कूल जाता होता था। बट हाँ सर आजकल स्कूल इतना आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये आप अपना वहां पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वहां पे इतनी डिस्टेंस नहीं रही स्कूल में, और अगर रही भी है तो आपका जो सिलेबस नीट के लिए है वही सिलेबस आपका स्कूल में चलेगा, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। हाँ स्कूल में इंग्लिश आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट बेसिक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही आप स्कूल में पढ़ते हैं, वही आप घर पे पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं। तो हाँ दिक्कत आ सकती है, बंदा थक जाता है, बॉडी नहीं अलाउ करती, बट हाँ विद टाइम मैनेज हो जाता है, विद टाइम आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है।
1: जी कृषि, एक होर वड्डा सवाल ये भी है कि जदों तुसी पढ़ाई कर रहे होने हो, सोशल मीडिया दे नाल इंटरेक्ट कर रहे होने हो, टेंशन ना आवे, तां कुछ अजिहे रोल मॉडल भी होंदे आ जिहड़े तुहानूं बूस्ट कर रहे होंदे आ, तुहाडे बूस्ट करन ते इस नीट दे एग्जाम नूं क्रैक करन दे पिछे किहड़े किहड़े उह परिवारक ते स्कूल दे ते तुहाडे कोचिंग दे उह रोल मॉडल सीगे जिन्हां नूं तुसी जदों क्रैक कीता ते सब तों पहलां उहनां दीआं तस्वीरां तुहाडे ज़हन दे विच आईआं, उह किहड़े किहड़े शख्स ने, किहड़े किहड़े परिवारक मैंबर ने?
0: तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे दादा जी, मेरी दादी हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते थे, हमेशा ही कहते थे कि यार तू लगा रहे, बस ज्यादा सोच मत, अपना हार्डवर्क करता रहे, भगवान सब कुछ सही करेगा। मतलब भगवान कभी भी सर मेहनत को कभी उसके मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा उसका सही आपको फल देता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि हार्डवर्क करोगे तो फ्रूट मिलेगा, भगवान देगा, किसी ना किसी रूप में जरूर देगा। लेट जरूर दे सकता है सर, किसी बच्चे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ जाता है 1-8 साल, तो लेट जरूर मिल सकता है, बट मिलेगा जरूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हाँ मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे टीचर्स और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो मेरे साथ 10th तक रहे हैं उनकी काफी सपोर्ट था। उनसे मैं सर आधा आधा घंटा घंटा बातें करता रहता था कि मन हल्का हो जाता है। हाँ उनका काफी सपोर्ट था।
1: जी, और एक पंजाबी दे अखाण हिंदी दे जिहड़े हैगे आ लुकतियां भी आ कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आप खाली पढ़ लिख के ही आगे बढ़े या खेल कूद में भी आपका इंटरेस्ट था? कैसे जो है टाइम टेबल में जब समा फुर्सत का था तो कैसे आप मैनेज करते थे?
0: अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहोगे ना तो आप एफिशिएंटली पढ़ भी नहीं पाओगे, मुझे लगता है
1: जी
0: आपका वो करिकुलम नहीं बनता। तो हाँ सर मैंने अपनी स्टडीज को काफी ट्राई किया मैनेज करने का, कि मैं घर पे बॉल, बास्केटबॉल होती थी उसको ड्रिबल करता रहता था, बैडमिंटन खेल लेता था गली वाले फ्रेंड्स के साथ या पापा साथ। तो हाँ उससे मैंने काफी अपने आप पे वर्क किया।
1: जी, और दूसरा कोई इदां दा दोस्त भी सीगा जिहदे नाल तुसी आपदी पढ़ाई डिस्कस करदे सी, शेयर करदे सी, कोई डाउट क्लियर करदे सी, कोई इदां दा भी दोस्त होना जरूरी है गोल अचीव करन लई?
0: यस सर, हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए, ये नहीं है कि आप हर चीज को नेगेटिवली लो। मेरे थे काफी फ्रेंड्स, कम से कम 4 या 5, जिनके साथ मेरा एक हेल्दी एटीट्यूड रहता था कि हमें एक दूसरे से जितना

0: में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप

0: से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को

0: का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की

0: मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बखमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बखमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक, नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

नहीं दौलत खुशी के फूल का सेहरा पहन के आई है, गाफिल न इससे दिल लगा ये बावफा दुल्हन नहीं।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गुलाम फिल्म का गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही क्लियर होता है दोस्तों, जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी नागरिक जागरूक बन सके और अपना सहयोग इन कार्यों को दे सके। हम सभी, जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, हर एक का अपना महत्व है जो पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, इनका उचित उपयोग करना हमारा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है, और यही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाया जाने का उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें नेचर की रक्षा करनी ही होगी और उन्हें भी आगे यही सत्कर्म करने का वचन देना होगा। प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि सुकून की सबसे खूबसूरत भाषा प्रकृति ही बोलती है। हर सुबह धरती को, सूर्य को, आसमान को, हवाओं को, पानी को, सबको धन्यवाद दीजिए। हर शाम इनसे दोस्ती कीजिए। पेड़ों, नदियों और हवाओं से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, उसे संवारें, ताकि आने वाली हर सुबह और भी हरी भरी, खुशहाल और मुस्कुराती रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम मनाएंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: और आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। और आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है।

0: शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: वो बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

1946 के शुरुआती दिन रहे होंगे। उर्दू के जाने माने साहित्यकार सादात हसन मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत अपने एक मित्र को बुलावा भेजा बतौर लेखक हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मंटो मित्र मुंबई पहुंचे, संवाद लेखन आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में अभिनय भी किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग या डायलॉग राइटिंग उनके बस की बात नहीं है। उन्हें तो बचपन से शायरी का शौक रहा है। उसी वर्ष फिल्मिस्तान स्टूडियो के निर्देशक एस मुखर्जी ने उन्हें गीत लेखन का अवसर दिया। फिल्म थी दो भाई, संगीतकार थे एस डी बर्मन। दो भाई के ये गीत अत्यधिक पसंद किए गए और ये गीत उस शायर को स्थापित कर गए जिसका नाम था राजा मेहदी अली।

1928 में अखंड भारत के कर्माबाद में जन्मे राजा मेहदी के सर से 4 वर्ष की कच्ची उम्र में पिता का साया उठ चुका था। उस परिवार के करीबी मित्र मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार राजा मेहदी की वालिदा हिबे साहिबा एक जहीन महिला थीं और उस जमाने की एक मानी हुई शायरा भी। मतलब शायरी की घुट्टी तो राजा मेहदी को बचपन से ही मिल रही थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ उनका शायरी का शौक बढ़ता ही गया। 1946 का वाकया तो हमने आपको बताया। 1947 में आजादी के बाद उभरी विभाजन की कठिन परिस्थितियों में राजा मेहदी अली खान ने अपनी पत्नी ताहिरा के साथ भारत में ही रहने का निर्णय लिया। और यही नहीं, 1948 में शहीद फिल्म के लिए गाने लिखकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। शहीद के अलावा उस वर्ष उन्होंने एक्ट्रेस विद्या और जिद्दी फिल्म के लिए भी गीत लिखे। लेकिन एक सफल गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए

उन्हें इंतजार करना पड़ा 1950 का, जब उन्हें मिली फिल्म आंखें। संगीतकार थे मदन मोहन। मदन मोहन साहब के साथ राजा मेहदी अली खान ने जोड़ी बनाई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कामयाब और मशहूर गीतों का। अदा, मदहोश, जागीर, अनपढ़, आपकी परछाइयां।

जब याद किसी की आती है, और नवाब सिराजुद्दौला, ये तो केवल कुछ नाम हैं उन फिल्मों के जिनके गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए, और इन गीतों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया और बनाया राजा मेहदी अली खां को सफलतम गीतकार।

0: प्रियतम के लिए आप शब्द का उपयोग किया। आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़। आप क्यों रोए, फिल्म वह कौन थी? आपने अपना बनाया फिल्म दुल्हन एक रात की। ये कुछ उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि राजा मेहदी अली खां केवल संजीदा किस्म के ही गाने लिखते थे। उनकी शायरी का व्यंग्य पक्ष भी अत्यधिक मजबूत था और उनके द्वारा रचे गए कुछ हास्य गीत भी सुनने वालों को भा गए। इन मजाहिया गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो गीत जो उन्होंने मेरा साया के लिए लिखा।
1: झुमका गिरा रे

0: झूठा गीत।
1: राजा मेहदी अली खान वास्तव में अपनी शायरी की दुनिया के राजा थे, क्योंकि बनी बनाई धुन पर उन्होंने कभी भी शब्द नहीं पिरोए। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मदन मोहन के अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कभी काम नहीं किया। अन्य संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है, खेमचंद प्रकाश, बुलोसी रानी, एस एन त्रिपाठी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, रवि, रोशन, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओ पी

0: प्यार का राही हूं।
1: राजा मेहदी अली खां की कलम से ज्यादातर खुशबूदार फूल ही झड़ते रहे हैं, अर्थात उन्होंने सबसे ज्यादा रचना की प्रेम गीतों की, जिनमें से वह कौन थी फिल्म

29 जुलाई को राजा मेहदी अली खां इस संसार से विदा हुए और जाकर बस गए अपने चाहने वालों के, फिल्म संगीत प्रेमियों के।

0: हमारे आज के फनकार थे राजा मेहदी अली खां, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दी प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समां 10:17 हो रहा है। हुण पेश है सदाबहार हिंदी गीतां आधारित प्रोग्राम गीत पिटारा।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
0: जेल ता तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, की तुसी जानना चाहुंदे हो कि श्रीमद भागवत गीता दा असली संदेश की है? की तुसी जीवन दे प्रश्नां दे उत्तर

सच ज्ञान दी रोशनी विच लभना चाहुंदे हो ता जरूर सुनो श्रीमद भगवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे।

0: वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: ते आओ हुण सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज दे विच ए गीत।

सुनना ना भुलना दोस्तों, मिति 29 जुलाई 2026 शाम 5 बजे दिन होवेगा बुधवार।

प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा, जिस दे तहत तुसी आनंद माण रहे हो हिंदी गीतां दा। स्टूडियो घड़ी दे अनुसार समा हो रहा है 10:24 ते 6 सेकंड दा। अदनान समी दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा सुनदे हां अगला गीत।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम एक की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से मुलाकात की। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक कल पेश किया गया। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन

एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक मंगल मिलन आज सुबह संसद भवन में हुई। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एजाइलम में बदलाव किया है जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ। पहला मैच असम और मिजोरम के बीच खेला गया। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी पर इस वक्त खबर बॉलीवुड की। यस, खबरें बॉलीवुड की पूरे 1 घंटे। और जबरदस्त, इन खबरों के बीच बहुत सारी और भी सरप्राइजेस आपके लिए एकदम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शो बॉलीवुड ट्रेंड्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी आकाशवाणी रेनबो पर। और हाँ, आप सबके लिए सवाल भी तो है, इसके लिए बस जुड़े रहिए, ध्यान से सुनते रहिए मेरी बातों को। तो बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेंड्स बबीता त्रिपाठी के साथ। ढेर सारी बॉलीवुड के खबरें और

कवि के कहने का तात्पर्य क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो घंटा है वो आपका एकदम इसी तरह से ता जो भी मतलब म्यूजिक हा वाला चल रहा है ना, ऐसे ही चलेगा। मतलब डांस होगा, मस्ती होगी और ढेर सारा मनोरंजन के साथ आपके लिए खबरें भी होंगी, वो भी मनोरंजक ही होंगी। क्यों? क्योंकि आपके अपने पसंदीदा बॉलीवुड से जुड़ी होंगी, बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें तो होंगी और साथ में एक सवाल भी होगा जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं। बॉलीवुड सरताज क्या करता है? हमसे बात करता है और सारी दुनिया उसकी आवाज सुनती है आकाशवाणी रेनबो के थ्रू। तो आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। 11:30 बजे जो सवाल आएगा उसका जवाब दे देना है, बस इतनी सी बात, व्हाट्सएप मैसेज करके देना है। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, आपका नाम बिल्कुल शामिल होगा, नाम और आपके शहर का नाम, तो सौदा बुरा नहीं है, एकदम खरा खरा सौदा है। और इस सौदे को इंजॉय करने के लिए आपको आधे घंटे बहुत ध्यान से सुनने होंगे और बहुत ही आसान सा सवाल, और जवाब का जो रिजल्ट होगा वो तो कमाल ही होगा, है ना? तो बस जुड़े रहिए और बॉक्स ऑफिस का हाल के लिए लौट कर आइए। छोटा सा गाना है, एंजॉय करिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ यानी बीटी विद बीटी। और अभी बॉक्स ऑफिस का क्या है हाल उसको जान लेते हैं। वैसे धमाल मूवी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बॉक्स ऑफिस की क्या ही बात करेंगे। अभी धमाल मूवी क्या कमाल और बवाल मचा रही है ये जानना चाहेंगे तो हम भी बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। धमाल मूवी की ये फ्रेंचाइजी यानी धमाल 4 जो आ रही है ना, आई है, रिलीज हुई है, 17 दिन हो गए इस मूवी को। और इसने अब क्या किया है पता है? अब इसने कुछ नया ही कमाल कर दिया है, टोटल धमाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पता है। टोटल धमाल जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी अब तक धमाल की जितनी भी फ्रेंचाइजी मूवी आई है, और उनमें अब धमाल 4 नंबर 1 पर आ गई है। और अजय देवगन की मूवीज की बात करें तो उनकी जो टॉप 5 मूवीज जिन्होंने कमाल किया है ना उसमें बस शामिल होने ही वाली है। रेड 2 को उसने अगर पछाड़ दिया थोड़े ही दिनों में तो बस टॉप 5 में ये मूवी शामिल हो जाएगी अजय देवगन की। और इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल 4 छाई हुई है। 17वें दिन भी फिल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई, 6.72 करोड़ का इसने कलेक्शन किया। और उसके बाद कुल कलेक्शन भारतीय नेट कलेक्शन जो है वो है 157.13 करोड़ पहुंच गया है। और टोटल धमाल को इसने लाइफ टाइम जो कलेक्शन टोटल धमाल का था उसको पीछे छोड़ते हुए अब ये नंबर 1 पर हो गई है। और अजय देवगन की टॉप 5 मूवीज में बस आने को तैयार है। धमाल 2007 में आई, डबल धमाल 2011 में यानी 32, उसके बाद 45.05 करोड़ लगभग, उसके बाद टोटल धमाल आई 2019 में 154.30 करोड़ लगभग, और अब धमाल 4 157.13 करोड़। गजब गजब परफॉर्मेंस ऐसे कहना चाहिए है ना।

कुड़ी की नई मुंडे की बात करते हैं भाई। अब अजय देवगन की बात करते हैं। अजय देवगन ने अपने पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर बीरू देवगन की जयंती पर आने वाली एक्शन फिल्म का ऐलान किया था और फिल्म का नाम चौहान उन्होंने ऐसा बताया। अब उसके बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्साइटमेंट का लेवल भी तो तभी बढ़ता है ना। और उस फिल्म के बारे में हमें अगर पता रहता है तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, इसीलिए तो आप सुनते हैं बॉलीवुड रील्स। तो फिलहाल आपको बता दूं कि इसका टीजर भी आ चुका है और उसके बाद अब जब एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ी तो अब एक और खबर आ गई है। और वो खबर क्या है कि इस नीरज यादव के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में, एक्शन फिल्म में, अजय देवगन क्या रोल निभाएंगे? नहीं, ये खबर बिल्कुल नहीं है, ये तो अभी सीक्रेट है, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। मेरी एक्साइटमेंट इसी बात को लेकर है कि आखिर इसमें है क्या चौहान मूवी में, और इसके बारे में, अजय देवगन के रोल के बारे में अभी बातें सीक्रेट रखी गई हैं, तो हम भी इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास बात ही नहीं बताने के लिए। और रही बात जो टाइटल है इसको लेकर अभी जो बात चल रही है वो अलग हंगामा मचा हुआ है, लेकिन उसी बीच एक और हंगामेदार खबर ये आई है कि इस एक्शन थ्रिलर मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने के लिए विक्रांत मैसी को साइन किया गया है। यस, अजय देवगन की जो आने वाली मूवी है ना, विक्रांत मैसी उसमें एंट्री मार चुके हैं और ये जो उनका जो कैरेक्टर है ना वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो एकदम अलग जो रोल होगा वो भी। और विक्रांत मैसी को भी शायद हम ऐसे रोल में पहली बार देखेंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवीज में तो हम उनको देख ही चुके हैं, लेकिन एक्शन थ्रिलर में नेगेटिव रोल, ग्रे किरदार निभाने वाले कैसे होंगे विक्रांत मैसी, पता नहीं। मंत्र ये कैसा, क्या बता, वो भी कुछ ऐसा ही मंत्र पढ़ दें कि हम उनके हो जाएं इस रोल के लिए भी।

नई नई फिल्मों में नई नई एंट्रियां होती हैं और हमारी एक्साइटमेंट उस फिल्म के लिए बढ़ती है, और हम जानने के भी बड़ी एक्साइटमेंट हमारी रहती है कि आखिर इस मूवी में क्या कुछ होने वाला है, क्या नया होने वाला है। तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें थिएटर तक जाना भी है या नहीं जाना है। और अभी आपको जाना है या नहीं आप डिसाइड करिए, मैं तो बस बताती हूँ आपको। आप इसीलिए तो सुनते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। फिलहाल बीटी विद बीटी चल रहा है, बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं और सवाल का टाइम भी होने वाला है, जिसका जवाब आप देंगे तो बॉलीवुड सरताज बन जाएंगे। अब ये मत कहिएगा बताया नहीं, कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म है द प्राइड ऑफ भारत, आगे भी है। इस टाइटल को काफी लंबा रखा गया है तो हम या तो आधा बोल देते हैं तो उससे काम चल जाएगा। अब थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसको याद करने के लिए, लेकिन इसमें एक एक्ट्रेस की एंट्री हुई है तो वो हमने सोचा आपको बता देते हैं। और रही बात फिल्म के टाइटल की, तो है द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है लंबा सा टाइटल इस मूवी का, और जैसा कि टाइटल बता रहा है कि ये इस कहानी क्या है, कुछ आपको आइडिया लग गया होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कहानी है, और वो प्राइड ऑफ भारत तो थे ही। अब इस बात को मिलाकर ये इतना लंबा नाम रखा गया है। और रही बात ऋषभ शेट्टी की, तो इस फिल्म का ऐलान तो पहले कर दिया गया था और ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में है इसका भी ऐलान कर दिया गया था, पोस्टर भी आ गया है, लेकिन अब इसमें और क्या नया आया है ये जानना है। तो वो हुई है एक हीरोइन की एंट्री, जिसके बाद हमारे दिल की घंटी बज चुकी है। और आप अगर सोच रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा है तो नहीं, गाना भले ही उन पर ये फिल्माया गया है लेकिन ये सुंदरी है भूमि पेडनेकर। यस, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो ये फिल्म बन रही है उसमें भूमि पेडनेकर की एंट्री हुई है, और इस ऐतिहासिक फिल्म में वो महान वीरांगना बेलवाड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाने वाली है। इस एंट्री का हम इस तरह से घंटी बजाकर स्वागत करते हैं। आप सुनते रहिए बीटी विद बीटी।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और आकाशवाणी रेनबो पर समय है आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल पूछ ही डालने का, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सहताज। तो व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया है, नंबर एकदम पता है आपको, और नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ। दिमाग यहीं पर रखिए और हाँ, कीपैड पर थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, कई बार आप जल्दबाजी में गलत जवाब टाइप कर देते हैं। तो सवाल तो सुन ही लीजिए, इतना एहसान कर दीजिए, मुझे पता है आप आइडिया लगा ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि सवाल क्या पूछने वाली हूँ। हाँ तो पूछ लेती हूँ, अजय देवगन की आने वाली मूवी की बात की थी और उसमें किस एक्टर की एंट्री की खबरें बताई हैं मैंने, तो बस आपको उनका नाम लिखना है आपको और अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले, और उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि अजय देवगन की आने वाली जो मूवी है चौहान, उसकी बात कर रही हूँ, जो उनकी आने वाली मूवी चौहान की अनाउंसमेंट हुई है उसमें किसी एक्टर की एंट्री की खबरें हैं और उनका नाम आपको लिखकर भेजना है। सबसे पहले अपना नाम, शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है वो नाम जो है आज का आंसर, उसके बाद भेज देना है नंबर पर जो नाम, नंबर है 9868107070, हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और इस पर अगर आपने सही जवाब भेज दिया तो क्या पता बॉलीवुड सरदार बन जाए, और नहीं बने तो आपका मैसेज, आपका नाम, आपके शहर का नाम जरूर शामिल होगा, बशर्ते आपने उसी तरह से टाइप किया हो जैसे मैंने कहा था। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ यानी बीटी विद बीटी। और अब अगर आपको नई फिल्म का इंतजार है तो थोड़ा सा इंतजार बढ़ा देते हैं। किस फिल्म का इंतजार बढ़ाना है भाई, चलिए बढ़ा देते हैं। आने वाली मूवी पंकज त्रिपाठी की एक थी जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे कि भाई अब पंकज त्रिपाठी को देखने को मिलेगा। अब इंतजार खत्म हुआ लेकिन क्या करें, अब ये इंतजार थोड़ा सा बढ़ गया है। और किसकी बात कर रहे हो, फिल्म कौन सी आने वाली थी? ओ माई डॉग, यस ओ माई डॉग, ना कि ओ माई गॉड। ये मूवी है और आने वाली थी 31 जुलाई को, लेकिन अब रिलीज से कुछ दिन पहले ही ऐसा डिसाइड किया टीम ने कि इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। अब क्यों किया अंदर की बात है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन पोस्टपोन हो गई है ये खबर बाहर आ चुकी है। और ऐसे में इंतजार थोड़ा सा बढ़ गया है, ज्यादा नहीं, 7 अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी, तो लगभग 1 हफ्ते का इंतजार हम कर सकते हैं। लेकिन मूवी में क्या कुछ होने वाला है खास, ये जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मूवी का टाइटल है और बताया भी गया है, उसके हिसाब से ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद देखेंगे ओ माय डॉग।

देखिए ढोल नगाड़े सब बजते रहेंगे क्योंकि शो चल रहा है बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और आज जन्मदिन है आयशा जिलका का, याद है कितना जबरदस्त प्यारा सा प्यारी सी मुस्कान और क्यूट सा फेस लेकर जब भी आती थी तो छा ही जाती थी। छोटी सी हाइट लेकिन क्या जबरदस्त कमाल की एक्टिंग और कमाल की सफलता उनको मिली छोटे से करियर में भी। कुर्बान जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, दलाल, बलमा और मेहरबान जैसी मूवीज आई तो लगा कि वक्त हमारा है, ऐसा कह रही है आयशा जिलका। 1993 में ये मूवी भी आई थी और 90s के दौर में इनका एक मासूम सा जो चेहरा है वो छाया ही रहता था। फिल्म मासूम के लिए भी ये जानी जाती है जो 1996 में आई थी और फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की लेकिन हाँ छोटे से दौर के लिए ही रही और उसके बाद गायब हो गई। बलमा मूवी में एक गाना था ना, अगर जिंदगी हो, बहुत ही प्यारा लगता था उस वक्त पर। और आज के दौर में थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ 90s का है तो मे बी जेंसीज को उतना खास ना लगे, लेकिन हम इसको बड़ा गुनगुनाते थे। और आज पता है जन्मदिन धनुष का भी है, साउथ की मूवीज में वो बहुत एक्टिव हैं लेकिन इंडियन मूवीज जो भारतीय यानी हिंदी भाषा में जो मूवीज आई हैं बॉलीवुड की मूवीज हैं उसमें बहुत कम, रांझा जैसी मूवीज में दिखे लेकिन जो कमाल का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया शायद यही बोलते हैं। और उस गाने से तो क्या जबरदस्त छा गए, उनका नाम सब ने जानना शुरू कर दिया और बॉलीवुड में रांझना मूवी से एक अलग ही पहचान उन्होंने बना ली और इन गानों से भी। तो इन दोनों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आयशा जिलका का ये गाना तो सुन ही लेते हैं थोड़ा सा ही सही लेकिन जरूर।

आप सबसे पूछा था कि अजय देवगन की आने वाली मूवी चौहान में फिलहाल किसकी एंट्री की खबर मैंने बताई थी, किस एक्टर की एंट्री हुई है, और यही आज का सवाल जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है 9868107070 पर। ऑलरेडी आपने आंसर दे दिए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि आप सबके मैसेजेस शामिल कर लूँ, नहीं तो फिर बॉलीवुड सरताज से बातें भी तो करनी है, टाइम बचाना है, थोड़ा सा भागा जा रहा है। इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं आप सब तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक मैसेज तो ये भी आया है कि मैंने बहुत अच्छा गाया, बस मुझे लगा कि इस गाने को पूरा ही सुनाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम है कि कह रहा है कि मैसेजेस शामिल करने हैं, एक मुखड़ा और सुनाऊंगी सिर्फ।

वैसे बता दूं ये अंतरा था, मुखड़ा नहीं था, और मुखड़ा मैंने गाया था थोड़ा सा, और आपको बता दूं इससे ज्यादा मैं गाऊंगी तो आप मैं पकड़ी जाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी सिंगर हूं, इसलिए रहने ही देते हैं। इम्तियाज अली और कीर्ति, इम्तियाज अली ने ये बात कही थी। और अब सबके मैसेजेस शामिल करती हूँ जिन्होंने आंसर दिया है, और देखते हैं बॉलीवुड सरताज कौन बनता है। लेकिन आंसर जिसके आए हैं उनके नाम ले लेते हैं, और ज्यादातर या कह दें कि लगभग सही ही जवाब दिख रहे हैं मुझे अभी तक। तो शुरू करते हैं। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं, और बदायूं उत्तर प्रदेश से विनीत कुमार लिख रहे हैं, और सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, शिव मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से लिख रहे हैं, निकिता पुणे से लिख रही हैं, पंकज महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, सुखलाल बाला कहाँ से लिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, अंकुश चौहान ये मोहाली से लिख रहे हैं, और सुधा का भी मैसेज दिख रहा है कहाँ से ये नहीं दिख रहा है, अनुज दिल्ली से लिख रहे हैं, और अनूप साहू का भी मैसेज दिख रहा है, लेकिन ये लंबा सा मैसेज पढ़ने के लिए, मतलब जो एड्रेस है वो इतना लंबा है कि मुझे खोलना ही पड़ेगा मैसेज, और ये है कासगंज से, और ये यूपी में आता है। फरीदाबाद से मैसेज आ रहा है रामलाल का भी, रामलाल राज का, और प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, पूजा कोमल का भी मैसेज दिख रहा है।

धर्म भाटिया रोहतक से लिख रही हैं, नीतीश कुमार झारखंड से लिख रहे हैं, और सही जवाब के साथ ये किसका मैसेज है, जगतर सिंह यादव का, और ये मैसेज आया भटिंडा से, उमेश कयाला से, तौसीफ अहमद श्रीनगर से, मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, और नेक्स्ट मैसेज है मोहम्मद इम्तियाज का कीर्ति नगर।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लोरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे, प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

0: वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਇਲ K9 ਪੈਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਇਲ K9 ਪੈਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਨੀਅਰ ਹੋਟਲ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-4200-223।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार ते स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो गया 1:06 ते 7 सेकेंड दा। असी गल कर रहे सी अपनी सेहत दी संभाल बारे। सो हैपेटाइटिस डे मनाउन दे नाल नाल अज मीह अते बारिशां दे मौसम विच असी भी अपनी सेहत दा ध्यान रखना है। मक्खी मच्छर तो बचना है, खांसी जुकाम तो बचना है, ते नाल नाल इस सौन दे महीने दा आनंद भी लैना है। ते आनंद लैण लई अपने पसंदीदा खाण पकवान दे नाल नाल सुंदर सुंदर गीत भी सुनने हैं। ते आओ सुनाने हैं तुहानू ए प्यारा जिहा गीत।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। आज श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर विखे एयर इंडिया दे ईजी कनैक्ट हब एंड स्पोक मॉडल दी शुरुआत नाल पंजाब उत्तरी अमरीका बरतानिया यूरोप ते आस्ट्रेलिया भारत विच 27 आलमी स्थाना नाल जुड़ गया है। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू जिन्होंने इस मौके वर्चुअली इकट्ठ नूं संबोधन किया ने कहा,
1: अब तक अमृतसर एयरपोर्ट से आपको 7 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होती थी। अब दिल्ली जैसे इस तरह हब एंड स्पोक में कनेक्ट हो रहा है तो आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो आपको दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, पेरिस इसके जैसे 20 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आपको एक चेक इन, एक बैगेज टैग के साथ आप कर पाएंगे।
0: उन्होंने कहा कि अंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख मुसाफर अंतरराष्ट्रीय उड़ाना फड़न लई अमृतसर तो दिल्ली यात्रा करते हैं। इसी तरह करीब 1.5 लाख मुसाफिर विदेशों तो दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर अमृतसर का सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शहर उत्तरी भारत लई अंतरराष्ट्रीय राह बन जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत मुख्य खेत्र अमृतसर राही जुड़नगे। उन्होंने भी कहा कि विदेशों में रहने वाले करीब 3 करोड़ भारतीय विचों कोई 1 करोड़ पंजाबी ने, जिवें जिवें हवाई संपर्क वधेगा अमृतसर की आर्थिकता नु सीधा लाभ होगा। सिविल हवाबाजी बारे सकत्तर समीर कुमार सिन्हा जो कि एआई दे चेयरमैन विपिन कुमार दे नाल अमृतसर विखे लॉन्च दा हिस्सा सन ने कहा कि ए हब हवाबाजी खेतर लई सरकार दी एक महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुसाफिरां नु उन्हां दे राज तों अंतरराष्ट्रीय स्थानां तक सफर करन विच सहूलत देगी। पंजाब सरकार ने अज ठेके ते काम करन वाले सफाई सेवकां अते सीवरमैनां दे महीनावार मेहनताने विच वड्डे वादे नूं मंजूरी दे दित्ती ए। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब राज सफाई कर्मचारी कमीशन दे चेयरमैन चंदन ग्रेवाल ते पंजाब दलित विकास बोर्ड दे चेयरमैन श्री विजय दानव की अगवाई हेठ सफाई सेवक यूनियन दे नुमाइंदियां नाल दिन भर व्यापक विचार वटांदरा करन तों बाद यह फैसला लिया है। सफल विचार वटांदरे तो बाद सूबे भर विच सफाई कर्मचारियों ने चल रही हड़ताल वापस ले ली है। कल शाम पंजाब भवन विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदियां स्थानक सरकारा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, सफाई सेवक साडे शहर विच सफाई लई अहम भूमिका निभांदे ने ते इह फैसला इह यकीनी बणाउंदा है कि ठेके ते रखे सफाई सेवकां ते सीवरमैनां नूं हुण रेगुलर सफाई सेवक सीवरमैन नूं परख काल दौरान दित्ते जाण वाले कुल मासिक मेहनताने दे बराबर मेहनताना मिलेगा। शहरी स्थानां इकाइयां ते नगर सुधार ट्रस्टां वल्लों ठेके ते रखे गए सफाई कर्मचारियां नूं हुण 1 अगस्त 2026 तों रेगुलर कर्मचारियां नूं परख काल दौरान मिलण वाले 20,500 रुपए प्रति महीने दे बराबर तनखाह मिलेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार वल्लों सरकारी स्कूलां नूं

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे, प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

0: Situation and Disaster Response and Rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both houses of parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: This was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

0: 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब

0: अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी

कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-4200-223।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, की तुसी जानना चाहुंदे हो कि श्रीमद भागवत गीता दा असली संदेश की है? की तुसी जीवन दे प्रश्नां दे उत्तर सच ज्ञान दी रोशनी विच लभना चाहुंदे हो? ता जरूर सुनो श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक, मिति 28 जुलाई, दिन मंगलवार, शाम 5:30 बजे।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे, प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

प्रोग्राम दे विच अगला गीत असीं सुणांगे राहत फतेह अली खान दी आवाज़ दे विच। इस गीत दी फरमाइश साडे कोल लैके पहुंचे ने बजिंदर सिंह हनुमानगढ़ जंक्शन गांधी नगर तो, गुरलाल माही नंगल, भतीजा रबाब सिंह, देव महंत माही नंगल, जरनैल सिंह मान, पूरा सिंह नंबरदार, बूटा सिद्धू मशाणा, मोटा सिंह मोता सिंह नगर जलंधर तो, मनोज जैन, समता जैन, पिट्टू राजा, मट्टू राणी पिंड फुलो मिट्टी तो, हरजस सिंह ढिल्लो, दिपेंद्र सिंह ढिल्लो, तारी बलकौर सिंह सिद्धू, जीत सिंह कौलदर, भोला सिंह बैनीवाल, राम सिंह गैरी बुटर तो, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ तो, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और कबीर। लाल सिंह नगर गली नंबर 15 बठिंडा तो, सुखपाल सिंह रतन, जसविंदर कौर, लवली रतन, विक्की रतन, सुखपाल, सिरकी बाजार, जलेबी वाला चौंक बठिंडा तो, पिंड लाल बाई जिला मुक्तसर साहिब तो, नछत्र सिंह, तेजा स्वामी गिदड़बा तो, बाबू सिंह पिंड ढिलवा तो, सुखदीप सिंह वडिंगखेड़ा पंजाब तो, मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, रामा मंडी तो, जगतार सिंह पूरबा, हरजोत सिंह पूरबा, पिंड मल्ला तो, जोधा सिंह, तेजा सिंह, तूफान कौर ते रोड़ू, पिंड चंजेड़ी तहसील खरड़ जिला एसएस नगर तो, लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन ते अरमान मलिक। इन्हां दी रली मिली फरमाइश ते आओ सुनते हैं नुसरत फतेह अली राहत फतेह अली खान की आवाज़ के गीत।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया, जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है, जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो,

0: कभी कभी मानसिक तनाव, शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
1: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर
0: बिल्कुल
1: हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसकी प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है। और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों के नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें। और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य
1: ये
0: करवाएं।
1: तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन जिसको कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना, इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जांच और टीकाकरण कराना और बहुत जरूरी है, ये सब
0: बिल्कुल।
1: बातें बता रहे हैं।
0: तो आरती, कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें।
1: बिल्कुल
0: और अब चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा
1: बिल्कुल, एक
0: मौसम
1: गीत सुन लेते
0: गीत
1: हैं।
0: की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के दो सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जाने बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा, और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामय की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामय में थर्मलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है

0: जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं, उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित, उनको एआई कहती हैं।
1: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं,
0: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में
0: अंतराल ले लेते हैं।
1: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: तो आरती, अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में, तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ की अत्याधुनिक नवाचार से, जो नवाचार वही जो इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में, और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं।
0: बिल्कुल, और कितनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती। और इसका कहने का मतलब यही कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं, इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
0: जी
1: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना।

0: इंसान तो नहीं रह सकता
1: बिल्कुल नहीं रह सकता,
0: कोई
1: क्योंकि
0: जीव जंतु
1: हमारे
0: कोई
1: लिए
0: प्राणी।
1: पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है, और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है। ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं ना, पंच तत्व
0: बिल्कुल
1: से शरीर बना हुआ
0: जी
1: है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
0: जी और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है, और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
0: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
1: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम है और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, एक वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है ना। तो
1: बिल्कुल,
0: उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे, और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
0: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का,
1: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते हैं, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा, जो
0: बहुत खुशी मिलती
1: बहुत
0: है,
1: खुशी मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम बताओ?
0: सूख जाएगा वो जो हमने लगाया है, बीच पता भी नहीं कहाँ अंदर वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े

0: वे असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
1: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
0: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
1: बिल्कुल। और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो। तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
0: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
1: और आरती, इसी के साथ
0: अंतराल
1: अंतराल का
0: का
1: समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के
0: जी
1: बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेजे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं
1: उनको
0: आरती देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं, तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल। और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: हम और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के, हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं। ये जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे।

0: तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, है ना, कुटाई पिटाई
1: बिल्कुल। हमारे साथी देखो
0: की।
1: लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है,
0: हाँ
1: और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है,
0: जी।
1: लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खूब दुहाई,
0: अरे वाह।
1: किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई, भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
0: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों, और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी, तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है, तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। जो आपने लिखा है उनके
1: अच्छा
0: बारे में बताया तो
1: हाँ,
0: इस वजह पे।
1: और हमारे साथी लिखते हैं, बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है, और सेक मतलब, मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर, तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
0: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे, वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
1: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई, इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही है। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर, और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी। कितनी
1: एक और हमारे
0: सुंदर।
1: साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही बता तो पोल खुल जाएगी,
1: ये तो
0: है
1: है।
0: ना। तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे, जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाए, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज तो है, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज के लिए भाई बहन की।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे, तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूं उससे कमजोर हूं। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए, तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती है कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल। और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता है। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
1: जी,
0: जी
1: तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं और आप ही मेरी पत्नी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए,
0: भाई,
1: तो बिल्कुल प्लीज काल उनको खाना दीजिए कृपया।
0: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ, तो मैं बता दी। चूहे, और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते

0: रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
1: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
0: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है। मेरे नाती ने जब उनकी फीस ज्यादा थी, अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नहीं,
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
0: अरे
1: पड़ा।
0: खूब वाली पड़ी कि
1: अच्छा,
0: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली, पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी। जब
1: उनकी
0: सुमन
1: पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
0: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको यह था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूं, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई, अभी तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंसी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब
0: ये
1: हुआ?
0: इशारा हुआ 15 मई 1956, व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं।
1: वाह वाह
0: मतलब एक जो
1: वाह,
0: लड़की आती है ना घर में,
1: पिताजी
0: लक्ष्मी,
1: के लिए नसीब
0: वो
1: लाती है।
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर। तो
1: ये
0: ये
1: इशारा
0: उनको
1: था,
0: याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: 56, फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी
0: सबसे
1: बेटी।
0: बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है, तुम तीनों मेरी अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल, 14 साल, तो
1: जी।
0: तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है, तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना, उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
0: वो अलग
1: रेल,
0: अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को एक

0: लिखी थी मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी
0: जो
1: जी
0: हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू उसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार, वाह वाह वाह वाह वाह
0: मांगा नहीं है, आप
1: वाह।
0: सोचो पूरी दुनिया मांग रही है, अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है, तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां
0: हाँ,
1: लिखी
0: बड़ा नटखट है तू,
1: कृष्ण
0: कृष्ण
1: कन्हैया।
0: कन्हैया
1: क्या
0: क्या
1: बात है, ये गाना भी
0: करे।
1: बख्शी साहब
0: और
1: का
0: सर
1: है।
0: वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
1: हाँ
0: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना। सर
1: वाह
0: क्या लाइन है यार, आप सोचो
1: वाह
0: हम क्या
1: वाह,
0: कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहां ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका आज मेरा होता,
1: क्या
0: इससे
1: बात
0: बड़ी
1: है,
0: दुआ है क्या दुनिया में।
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: बी
1: क्या
0: माई फ्रेंड,
1: गजब का ख्याल है।
0: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार ये तो मेरे जैसा है, अपना जैसा है यार।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन इन माय जॉब. आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर. शाकिर खान, शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. ही सर, मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूं.
1: गजब.
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माई वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं, तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है,
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवेंट एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है, तो क्यों निकालूं ये गाना, मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है, सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस आर माई वर्ड्स, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: क्या
1: एक बार
0: प्यारा
1: हमारे घर
0: गाना।
1: में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता। तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो। ही सेड टैगोर ने कहा है, द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा, यू विल नॉट स्माइल, टीयर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते
1: और
0: हैं।
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो और आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया
1: अरे
0: था,
1: कमाल है वो तो।
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूं तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूं, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूं, हमारे पितरों का नाम लेता हूं, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए, सेकंड टाइम पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका हर
0: जी
1: गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे।
0: बोरीवली में।
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
0: तो
1: और
0: चित्रमल
1: जिंदगी भर
0: स्वरूप
1: मरते
0: जी,
1: तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से कभी।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए।
1: हाँ
0: अब एक आसरा हो गया, यहां
1: हाँ
0: से स्ट्रगल किया जा सकता था।
1: हाँ
0: मैंने
1: करेक्ट।
0: सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे देते, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, ही वाज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, रोशन
0: बिल्कुल
1: साहब,
0: बिल्कुल
1: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोले सर आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहां चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था?

0: पागल हो
1: इतनी
0: क्या?
1: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ, लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
0: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या?
1: हाँ, तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी, मेरे लिए जरूरी था।
0: क्या
1: वो
0: बात
1: साला
0: है,
1: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारे ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, उसको पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ, तो
0: हाँ,
1: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
0: वाह वाह वाह वाह, यहां से
1: और
0: शुरू होता
1: बेदाग
0: है
1: के गाने क्यों जरूरी हैं,
0: जी।
1: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
0: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
1: तो
0: उसमें बख्शी साहब को बीच
1: जब
0: में मौका
1: राजेश
0: मिला था।
1: रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लव्स हैं, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
0: वाह वाह,
1: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शा गाने लिखना भूल गए, लेकिन जब बख्शा ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शा साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
0: कितनी
1: इतना
0: इज्जत,
1: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
0: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद
1: देवर,
0: वो जालिम, गुजरा जमाना
1: हाँ
0: बचपन का
1: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
0: जी।
2: हाँ।

0: तो ये अलग ही मिट्टी के लोग थे, ये
1: बिल्कुल
0: वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर
1: जी
0: बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे, महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए, और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको
1: हाँ
0: पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे।
1: साहब की
0: हाँ,
1: तरह।
0: तो सीधा अगर पैदल जाओ तो सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया ना, निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवान दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूं और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी। अच्छा फौजी हो, गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो, बताओ सुना कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई, बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया, धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, उसको बहुत पसंद आया। बोले वाह, तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी का लिख के लाया, सब लिख के लाया हो,
1: अरे
0: तीनों का चारों लिख के लाया हो, चारों गाने लिख दिए तुमने, हाँ
1: जी
0: सुनाओ, सुना रिकॉर्डिंग होगी उसकी
1: वाह वाह
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकलने देंगे, ये वो मिट्टी के लोग
1: इस
0: हैं।
1: तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है,
1: और यही हुआ
0: बुरा
1: कि
0: करेगा तो।
1: उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म
0: वो उनकी
1: मिली।
0: पहली हिट थी,
1: जी
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे, उससे पहले एक और हिट थी चांदसी महबूबा, उसमें
1: हाँ,
0: सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: एक दो गाने थे हिमालय
0: हाँ
1: की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था,
1: जी
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए मस्तानी कब आएगी तू।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे गाने लिख रहे हैं, वापस आकर गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के,
0: जमीन पे बैठ के, कोई नखरा नहीं,
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज
0: कभी
1: दो,
0: नहीं, कभी नहीं।
1: रिजॉर्ट में
0: बोलते हैं
1: भेज
0: मुझे,
1: दो।
0: अरे मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं, ऐसा क्यों खुश हैं, आपका आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है, ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो, तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख
0: गाने लेकर आऊँ,
1: रहा
0: कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लेकर आऊँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशियंट फॉर माई प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलोसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता है ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे,
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत
0: तुमने
1: करते थे।
0: 3 मांगा ना, 31 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3 4 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30 30 अंतरे लिख के
0: या
1: देते
0: या
1: थे
0: जब
1: कि आप
0: हम
1: इसमें
0: जवां
1: से चुन
0: होंगे
1: लो।
0: जाने कहां होंगे, 59 अंतरस,
1: अरे बाप रे, 59!
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर्ड के अंदर, वो घूमने आई है,

0: उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया।
1: जी जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी
0: जर्नलिस्ट के, उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है लॉन्ग ड्राइव पे चले, बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था, वो जू से निकलते थे पारसवणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरीक्रॉस रोड अपनी गाड़ी में, बख्शी साहब को पेरीक्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे।
0: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर अनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूं कहानी सुन के। और उन्हें ये लाइन कही थी प्यारी जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: He said, मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू LP, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो।

0: सुन, बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के, मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसे जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70 हजार मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70 हजार रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम।

0: किसी और के घर की लक्ष्मी मैं कितनी छिनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको
1: कोई
0: लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू आर अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू आर अराइव्ड, पता नहीं
1: हाँ
0: हिंदी में क्या उसका मुहावरा है,
1: कि कामयाब हो गए भाई, आपका तो
0: अरे बड़े
1: डंका बज
0: कामयाब हो
1: गया।
0: गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो टू रबिश इट, यू नो के नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, आरडी पे डाल दो, एलपी पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रेवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से वो अपना वो तानपुरा बजा रहा था, और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था,
1: जी
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा, और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह,
0: बोला बख्शी बॉस जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब।

सोर। अरे बाबा शोर नहीं, सोर, सोर, सोर।

0: बख्शी साहब जो सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका जो क्रेडिट है ना इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है तो आप ट्राई यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सैनी इज योर गुरु यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सैनी। तो शैलेंद्र बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो बजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो उनको तो उर्दू वाज़ द सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये एक
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक जो मैं चाहे यार करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

दां है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि ये सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर अनबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी।
2: चलो शुक्रिया, थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम।
4: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1।

श्री कृष्ण जी अर्जुन नु कहंदे ने, अपने सब धर्म नु वेखदियां तैनू डोलना नहीं चाहिदा, क्योंकि एक खत्री लई धर्म दे अनुसार कीता गया युद्ध सब तो उच्चा कर्तव है। प्यारे श्रोतियो, इस श्लोक विच श्री कृष्ण जी अर्जुन नु उस दे कर्तव दी याद दवांदे ने। अर्जुन अपने ही संबंधियां नु देख के मोह अते दुख विच डुब गया सी। उसदा मन अपने फर्ज तो हट रहा सी। श्री कृष्ण जी समझांदे ने कि मनुख नु अपने सब धर्म अर्थात अपने जिम्मेवार कर्तव नु पछाण के उस दी पालना करनी चाहीदी है। एथे युद्ध सिर्फ हथियारां नाल लड़ाई दा प्रतीक नहीं है, सगो जीवन विच सच न्याय अते धर्म दी रक्षा लई कीते जान वाले हर संघर्ष दा प्रतीक भी है। इस श्लोक दा संदेश हर युग विच लागू हुंदा है। एक अध्यापक दा धर्म सिख्या देना है, डॉक्टर दा धर्म रोगियां दी सेवा करना है, किसान दा धर्म अन्न पैदा करना है, अते हर मनुख दा धर्म है ओ इमानदारी निष्ठा अते जिम्मेवारी नाल अपना फर्ज निभाए। जदो असी मुश्किलां जां भावनावां दे कारण अपने कर्तव तो पिछे हटदे आं तां अंदर अशांति पैदा हुंदी है। जदो असी निष्काम भाव नाल अपना फर्ज निभाउंदे हां उस वेले मन नूं शांति अते जीवन नूं सार्थकता मिलदी है। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਿਆਇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

0: कृष्ण।
1: अर्थात हे पार्थ, इस तरह दा धर्म युद्ध अपने आप ही प्राप्त होया है, जो स्वर्ग दे दरवाजे खोलन वाला है। इस श्लोक विच श्री कृष्ण जी अर्जुन नु समझाउंदे ने कि उस दे सामने आया ए युद्ध कोई निजी वैर विरोध दा युद्ध नहीं, सगो धर्म अते न्याय दी रखिया लई लड़िया जान वाला धर्म युद्ध है। जदों मनुख नु धर्म दी रखिया करन दा मौका मिले तां उस नु डर या मोह करके इस तो पिछे नहीं हटना चाहिदा। अजिहे मौके हर किसे नु नहीं मिलदे। ए ओ अवसर हुंदे ने जिन्ना विच मनुख अपने चरित्र, निष्ठा अते सच प्रति समर्पित नु साबित करदा है। इस श्लोक दा संदेश अज भी उन्ना ही महत्वपूर्ण है। साडे जीवन विच अजिहे पल आउंदे ने जदों सानू सच अते झूठ, न्याय अते अन्याय, इमानदारी अते स्वार्थ विचों एक दी चोन करनी पैंदी है। कई बार सच दा साथ देना औखा लगदा है, पर ओही धर्म दा मार्ग है। रब सानू ए नहीं सिखाउंदा कि संघर्ष लभो, सगो ए सिखाउंदा है कि जदों धर्म अते न्याय दी रखिया लई संघर्ष अटल हो जावे तां उस तों मुंह ना मोड़ो। करतव नूं निभाउणा ही असली सफलता है। इह श्लोक सानू प्रेरणा दिंदा है कि जीवन विच जदों भी सच, न्याय, धर्म दा साथ देण दा मौका मिले तां उस नूं इक पवित्र जिम्मेवारी समझ के निभाइए। सच्चे करतव तों कदे भी पिछे ना हटिए।

हे अर्जुन, जिन्हां महारथियां ने अज तक तेरी वीरता अते योग्यता दा सत्कार कीता है, ओ एही समझणगे तू डर करके रणभूमि तो पिछे हट गया, इस कारण उन्हां दियां नजरां विच तेरा सन्मान घट जावेगा। इस श्लोक विच श्री कृष्ण जी अर्जुन नूं उसदी समाजिक अते नैतिक जिम्मेवारी दा बोध करवा रहे ने। अर्जुन केवल एक आम योद्धा नहीं सी, ओ अपने समय दा प्रसिद्ध महारथी सी। उसदी वीरता धनुर्विद्या दा हर कोई आदर करदा सी। जे अर्जुन इस वेले अपने करतव तो पिछे हट जांदा तां लोक उस दे मन दी करुणा नू नहीं जान सकदे सन। ओ एही समझदे कि ओ डर गया। इस तरह उस दी सालां दी कमाई होई इज्जत नू ठेस पहुंचदी। इस श्लोक दा डूंगा संदेश सिर्फ लोकां दी राय दी चिंता करना नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी यही समझा रहे ने कि जदों कोई मनुख किसी जिम्मेवार भूमिका विच हुंदा है तां उसदे कर्म होरां लई वी उदाहरण बनदे ने। इस लई उसनू अपने निजी मोह या डर तो उपर उठ के धर्म अनुसार काम करना चाहिदा है। अज दे समय विच यह सिक्ख्या ओनी ही महत्वपूर्ण है एक अध्यापक डॉक्टर जज या सैनिक मापे या फिर किसी भी जिम्मेवार अहुदे वाले व्यक्ति दे फैसले सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहंदे, ओ होरां नूं भी प्रभावित करदे ने। इस लई कर्तव अते सिद्धांतां उत्ते डटे रहना ही असली महानता है। इह श्लोक सानूं सिखाउंदा है डर या मोह कारण अपने धर्म अते जिम्मेवारी तो पिछे नहीं हटना चाहिदा। सच

हे अर्जुन, तेरे वैरी तेरी समर्था दी निंदा करदे होए तेरे बारे अनेका अनुचित अते अपमान जनक गल्ला करनगे। इस तो वद दुखदाई होर की हो सकदा है। इस श्लोक विच भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन नु समझा रहे ने कि जे ओ अपने धर्म अते कर्तव्य तो पिछे हटेगा ते उस दे विरोधी उस दी करुणा या अंदरूनी दुविधा नु नहीं समझनगे। ओ उस दे इस कदम नु कमजोरी अते डर दा नतीजा मान के उस दी निंदा करनगे। एथे मुख संदेश ए नहीं, मनुख सिर्फ लोकां दी आलोचना तो बचन लई काम करे। भगवान श्री कृष्ण जी दा पावे है, जदों असी अपने सही करतव तो हट जांदे हां तां असी अपने चरित्र अते सिद्धांतां नूं कमजोर करदे हां। उस दा नतीजा ए हुंदा है, सच अते धर्म दी ताकत घटदी है अते अधर्म नूं हौसला मिलदा है। साडे जीवन विच वी कई वार अजिहे मौके आउंदे ने जदों सही काम करना औखा लगदा है। जे असी डर दबाव या स्वार्थ कारण सच दा साथ छड्ड दईए तां ना सिर्फ साडा आत्म विश्वास घटदा है सगो गलत काम करन वालियां नूं वी हौसला मिलदा है। इस लई श्रीमद भगवत गीता सानू सिखाउंदी है कि अपने फैसले धर्म सच अते कर्तव्य दे आधार ते करने चाहीदे ने, ना कि डर या लोकां दी प्रशंसा या निंदिया दे आधार ते। इह श्लोक सानू प्रेरणा देंदा है असी अपने चरित्र अते कर्तव्य नू सब तो उच्चा स्थान दईए। सच दे राह ते डटे रहन वाला मनुख ही असल अर्थां विच मजबूत हुंदा है।

निश्चया। हे अर्जुन, जे तू इस धर्म युद्ध विच वीर गति प्राप्त करेगा ता स्वर्ग नू प्राप्त होवेगा, जे जित प्राप्त करेगा ता धरती ते राज दा भोग करेगा। इसलिए दृढ़ निश्चय नाल खड़ा हो अते अपने कर्तव्य दी पालना कर। इस श्लोक विच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दे मन विचो डर अते संदेह नू दूर करदे ने। ओ दसदे ने कि जदो मनुख धर्म अते न्याय लई अपना कर्तव्य निभांदा है ता उसदा नतीजा किसे भी रूप विच व्यर्थ नहीं जांदा। जे अर्जुन युद्ध विच वीर गति प्राप्त करदा है ता उसनू उच्ची गति मिलेगी। जे ओ जितदा है ता धर्म दी स्थापना करदिया राज करेगा। इस तरह दोवे ही स्थितियां विच उसदा कल्याण है। इसलिए उसनू फल दी चिंता विच फसन दी बजाय अपने कर्तव्य नू दृढ़ता नाल निभाना चाहिदा है। ए संदेश सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं, जीवन दे हर खेत्र विच जदो असी सच न्याय ईमानदारी नाल अपना फर्ज निभाउंदे हां तां साडी मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जांदी। सफलता मिले तां निम्रता नाल उसनू स्वीकार करिए ते जे उम्मीद अनुसार नतीजा ना भी मिले तां वी सच्चे कर्तव्य दा आत्मिक फल जरूर मिलदा है। इस श्लोक दा केंद्री संदेश है दृढ़ निश्चय नाल अपना धर्म निभाओ। संदेह मनुख दी शक्ति नू कमजोर करदा है पर दृढ़ विश्वास अते कर्तव्य निष्ठा उसनू उच्चाइयां तक लै जांदे ने। ए श्लोक सानू सिखांदे ने सही काम करन ते कदे डरो ना, नतीजे दी चिंता करन दी बजाए सच धर्म अते अपने कर्तव्य प्रति दृढ़ रहो। ईमानदारी नाल कीता गया यतन कदे व्यर्थ नहीं जांदा।

0: ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
1: हे अर्जुन, सुख अते दुख, लाभ अते हानि, जित अते हार, इन्हां सब नूं समान समझ के अपने कर्तव्य लई खड़ा हो जा। इस तरह कर्म करन नाल तू पाप दा भागी नहीं बनेगा। इस श्लोक विच भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग दा एक महान सिद्धांत दसदे ने। ओ कहंदे ने, मनुख नूं अपने कर्तव्य निभाउंदे समय नतीजियां दे मोह विच नहीं फसना चाहिदा। आम तौर ते असी सुख मिलन ते

खुश हो जाने हां अते दुख आन ते निराश हो जाने हां। लाभ होवे ता उत्साहित हुंदे हां, हानि होवे ता हिम्मत हार जांदे हां। जित सानू अहंकार वल लै जा सकती है, हार निराशा वल। श्री कृष्ण जी सिखाउंदे ने इन्हां हालातां विच मन नू संतुलित रखना ही योग है। इस दा अर्थ ए नहीं कि मनुख नू सुख या दुख दा एहसास ही ना होवे, सगो ए है कि इन्हां दे प्रभाव हेठ आके अपने धर्म अते कर्तव तो ना डिगे। अज दे जीवन विच ए सिख्या बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी प्रीख्या दे नतीजियां तो, व्यापारी लाभ या हानि तो, नौकरी करन वाला तरक्की या असफलता तो प्रभावित हुंदा है। श्रीमद भगवत गीता सानू सिखाउंदी है, मेहनत पूरी ईमानदारी नाल करो, पर मन नू नतीजे दा गुलाम ना बनाओ। सफलता विच निमर रहो अते असफलता विच धीरज रखो। एही सम भाव मनुख नू अंदरों मजबूत बनाउंदा है। जदों कर्म निष्काम भाव नाल अते धर्म दे अनुसार कीता जांदा है तां ओह मन नू शुद्ध करदा है अते आत्मिक उन्नति दा राह खोलदा है। ए श्लोक सानू ए वी सिखाउंदा है कि जीवन दे हर उतार चढ़ाव विच मन नू संतुलित रखदिआं अपने कर्तव नू निष्ठा नाल निभाउणा ही सच्चा योग है। साडा अधिकार कर्म उत्ते है, नतीजिआं उत्ते नहीं।

हे पार्थ, हुन तक मैं तेनू आत्मा दे ज्ञान दे दृष्टिकोण तो ए बुद्धि समझाई है, हुन तू कर्म योग दी बुद्धि सुन, जिसनू अपना के तू कर्मा दे बंधन तो मुक्त हो जावेगा। जी स्रोतियो, ए श्लोक श्रीमद भागवत गीता दे दूजे अध्याय दा एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हुन तक भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन नू आत्मा दी अमरता, शरीर दी नासवंता अते अपने कर्तव्य बारे समझाया। हुन ओ कर्म योग दा विशा शुरू कर देनी। इथे संख्या दा भाव है आत्मा अते शरीर दे भेद नू समझन वाला ज्ञान, अते योग दा भाव है उस ज्ञान नू जीवन दे कर्मा विच उतारना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं, उस ज्ञान दे अनुसार जीवन जीना ही असल योग है। श्री कृष्ण जी कहंदे ने, जदो मनुख सही समझ नाल निष्काम भाव नाल अते प्रभु अर्पण दी भावना नाल अपने कर्तव्य करदा है अते ओ कर्मा दे बंधन विच नहीं फसदा। कर्म ता हर मनुख नू करने ही पैंदे ने, पर जे ओ स्वार्थ अहंकार या फल दी आस नाल कीते जान ता ओ बंधन बन जांदे ने। जे ओ धर्म अते सम भाव नाल कीते जान ता ओही कर्म मुक्ति दा साधन बन जांदे ने। अज दे जीवन विच ए सिख्या बहुत उपयोगी है। असी अपने परिवार, समाज अते कम दीआं जिम्मेवारियां निभा रहे हां अते निभाईए, पर हर कम ईमानदारी, निष्कामता अते कर्तव्य भाव नाल करिए, एही कर्म योग है। ए श्लोक सानू समझाउंदा है कि ज्ञान अते कर्म दा मेल ही जीवन नू सफल बनाउंदा है। सही समझ नाल बिना स्वार्थ अते बिना फल दी लालसा दे ते कीता गया कर्म मनुख नू आत्मिक उचाई वल लै जांदा है। इस कर्म योग दे मार्ग विच कीता गया कोई भी सच्चा यतन कदे व्यर्थ नहीं जांदा अते ना ही इस दा कोई उलट नतीजा हुंदा है। इस धर्म दा थोड़ा जिहा अभ्यास भी मनुख नू महान डर तो बचा लैंदा है। इस श्लोक विच भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग दी एक बहुत ही आश्वासन देन वाली विशेषता दसदे ने। संसार दे बहुत सारे कम्मा विच जे असी सफल ना होइए ता मेहनत व्यर्थ लग सकदी है, पर प्रभु अर्पण दी भावना नाल निष्काम होके कीता गया ए सत्कर्म सदा लई साडी आत्मिक उन्नति दा हिस्सा बन जांदा है। श्री कृष्ण जी कहंदे ने, इस मार्ग विच कोई भी यतन नष्ट नहीं हुंदा, भावे मनुख पूर्णता तक ना पहुंचे, फिर भी उस दी कीती गई साधना नेक कर्म उस दे जीवन नू उच्चा बनाउंदे ने। एही गीता दा बहुत वड्डा हौसला है। सही दिशा विच चुक्या गया हर कदम कीमती है। इस श्लोक दे अंत विच आउंदा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। अर्थात इस धर्म दा थोड़ा जिहा

0: जी, दूजा सवाल है जो वो साडा ये है, अंतरराष्ट्री शतरंज दिवस कदों मनाया जाता है जी?
1: जी बहुत सारे साथी जड़े ने फहरिस्त च आ चुके हैं जी। साढ़े कोल चरणजीत जी ने, वसीम अकरम हुरी ने, साढ़े कोल दीपांशु है। ये सानू वक्ख वक्ख जगह तो मैसेज कर रहे ने। असी पूरा पता फिर साढ़े उसे ही स्रोता का पढ़ांगे जो सानू इस दा छेती नाल जवाब देवेगा जी। सो छेती नाल जवाब देण वाले साढ़े साथी ने जी गुरप्रीत जड़े ने, वो सही जवाब दे रहे हैं जी। 20 जुलाई ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्री शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो जो प्रोग्राम युववाणी है इस दे विच भी 20 तरीक नूं गलबात जिहड़ी है वो की गई सी। शतरंज नाल संबंधित एक मुलाकात भी रिकॉर्ड करके पंजाब शतरंज एसोसीएशन के प्रेजिडेंट के नाल तुहानूं सुनवाई गई सी। सो बहुत बहुत मुबारकां गुरप्रीत जी नूं अज दे इस प्रोग्राम दे विच मिस्टर जीनियस बनन ते।

जी श्रोतों, विनोद सोनी जी, मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है जिन्नी तुसी तेजी दिखा रहे हो। श्रोतों, विनोद सोनी जी जड़े ने मैणा चौंक तो तुहानू दस रहे ने।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

0: हाँ जी, तुसी सुन रहे हो?
1: हेलो,
0: हेलो,
1: सत श्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, साडे नवे श्रोता जुड़ गए जी साडे नाल, ते कित्थों बोल रहे हो जी तुसी?
1: पिंड फकर साहब तो जी, पिंड
0: ठीक है जी, ते केड़े
1: फकर
0: गीत
1: साहब तो
0: सुनोगे
1: अपना
0: जी तुसी?
1: पंजाब हो गए जी, और
0: अच्छा,
1: अपना गुरदास मान दा जी,
0: ठीक है जी।
1: ते जसविंदर कौर बोल दे।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ, FM ਬੈਂਡ 101.1 MHz।

0: ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ।
1: हेलो। हाँ जी सत
0: हाँ
1: श्री
0: जी
1: अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी, कितों बोल रहे हो ते कौन बोल रहे हो जी?
1: मैं पिंड सुचा तो बोल दी हूँ, जिला बठिंडा ते अमनदीप कौर नाम जी मेरा।
0: ठीक है जी, ते गीत केड़ा सुनोगे जी तुसी?
1: जैरी संधू दा जानू जानू आन कहिंदियां गोरी बीनी विच लाल चूड़ियां जी।
0: ठीक है जी, असी कोशिश करांगे यही गीत चलाण दी। ते
1: हाँ
0: तुसी
1: जी
0: दसो जी, रसोई दा काम कार नबेड़ लिया जी?
1: हाँ जी, रोटी बना ली।
0: ठीक है जी, रोटी
1: हाँ जी,
0: बना के खा पी के हुण वेले हो के तुसी गीत सुनोगे?
1: हाँ जी, आ जाओ तुसी भी रोटी खा लो जी।
0: धन्यवाद जी एडा प्यारा सद्दा देण लई। ते
1: हाँ
0: पहला
1: जी,
0: आपां तुहाडा गीत सुन लईए।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी।
0: ठीक है जी, ते आओ सुनदे आ फिर तुहाडी पसंद दा गीत।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: ठीक है जी, धन्यवाद जी।
2: ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3: ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਈਐਮਆਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਸਾਨ ਈਐਮਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ।
2: ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਨੀਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1800 420 2233।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। लोकसभा विच जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 ते चर्चा जारी है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ते 10 अते 20 रुपए दे पॉलीमर बैंक नोट लियाउण दी तजवीज नूं मंजूरी दे दित्ती है। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दस्सिया है कि विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 तहत मौजूदा माली साल विच 95,692 करोड़ रुपए अलॉट किए गए ने। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर च विधानसभा चोणां नूं पाकिस्तान वल्लों अपने गैर कानूनी कब्जे नूं लुकाउण दी कोशिश दस्सी है ते निशानेबाजी विच भारत दी सोनम उत्तम मस्कर अते हिमांशु टिल्लो ने ISSF विश्व कप जज राइफल पिस्टल शॉटगन विच 10 मीटर एयर राइफल मिक्स मुकाबले च कांसी दा तमगा हासिल कीता है। हुण खबरां विस्तार नाल। लोकसभा ने जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 नूं विचार अते पास होण लई चर्चा शुरू कर दित्ती है। ए बिल जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम कानून 2024 विच सोध करदा है। बिल विच कई अहम प्रबंध शामिल ने जिन्हां विच 10 साल तक दी कैद, 10 करोड़ रुपए तक दा जुर्माना अते दोषी पाए गए लोकां दी जायदाद जब्त करन वर्गे सख्त दंड शामिल ने। मामलों के तेजी नाल निपटारे नूं यकीनी बनाउण लई बिल हरेक राज सरकार ते केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नूं रोजाना सुनवाई लई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतां कायम करन दा आदेश दिंदा है। अपराधां दी जांच पुलिस स्टेशन विच जानकारी दर्ज होण दी तरीक तों 2 महीने दे अंदर पूरी होनी चाहीदी है। चार्जशीट दायर होण दी तरीक तों 3 महीने दे अंदर मुकदमे पूरे होने चाहीदे ने। बिल पेश करदिआं अमला, जनतक शिकायतां ते पेंशनां बारे राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नवां बिल देश के विद्यार्थियों ते नौजवानों की भलाई की रक्षा लई सरकार दी डूंगी वचनबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देश के नौजवानों के भविष्य नाल कोई समझौता ना करन दे अहद की भी पुष्टि करता है।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र

मार्क बारे श्री जायसवाल ने कहा कि भारत मजबूत खेतरी सहयोग की हिमायत करता है, कई दहाकिया तो इस दिशा विच काम कर रहे हैं। चीन नाल सरहदी व्यापार बारे एक सवाल का जवाब दिंदया बुलारी ने कहा कि दोवां देशां ने पिछले साल तीन निर्धारित व्यापारक केंद्रां राही सरहदी व्यापार नूं मुड़ शुरू करन ते सहमति प्रगटाई सी। भगौड़े नीरव मोदी नूं देश वापस लियाउण बारे श्री जायसवाल ने दस्सिया कि इस मामले संबंधी कानूनी कार्रवाई बरतानिया विच चल रही है। अफगानिस्तान विच संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने दस्सिया कि 1 अप्रैल तो 3 जून विचकार सरहद पार हिंसा विच 57 लोक मारे गए ने ते 342 लोक जख्मी हुए ने। इस सब लई पाकिस्तान दे सुरक्षा बल जिम्मेवार ने। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने कहा कि 28 जून नूं पाकिस्तान दे फौजी बलों वल्लों पक्तिया पक्तिका ते कुनार सूबियां विच जानलेवा हवाई हमले किए गए सन। इस तों पहला 1 अप्रैल विच कुनार विच भी गोलीबारी हुई सी। ये जानकारी पाकिस्तान ते अफगानिस्तान विचकार वधदे तनाव दरमियान सामने आई है। भारत की पहली सीधी व्यापारक कंटेनर मालगड्डी नेपाल पहुंच गई है। इस नाल सरहद पार रेल आधारित माल ढोआई विच एक नवा अध्याय शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय ने दस्सिया कि कनोला की खेप ले जाण वाली 40 डब्बियां वाली इस रेलगड्डी ने भारत नेपाल रेल आवाजाई दे सोधे हुए नियमों तहत अपना सफर पूरा किया। सेहत मंत्रालय ने अज राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम दे 8 साल पूरे होने ते मौके ते विश्व हैपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया। राष्ट्रीय सेहत मिशन तहत 2018 विच शुरू किए गए इस प्रोग्राम का उद्देश्य निरंतर रहने योग विकास टीचा के मुताबिक 2030 तक वायरल हैपेटाइटिस नूं जनतक सेहत लई एक खतरे वजों खत्म करना है। निशानेबाजी विच भारत दी सोनम उत्तम अस्कर ते हिमांशु टिल्लो ने चीन दे हांगसू विच चल रहे ISSF विश्व कप च अज राइफल पिस्टल शॉटगन विच 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले विच कांसी दा तमगा हासिल कीता है। ग्लासगो विच चल रही राष्ट्रमंडल खेडा विच अज भारत दे तैराक श्रीहरि नटराज परा तैराक बुरिजिना ते अली इमाम अते दौड़ाक विशाल की के आपो अपने मुकाबलिया विच मैदान च उतरनगे। आखिर च खास खबरां। लोक सभा च जनतक परीक्षावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 ते चर्चा जारी है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI ते 10 अते 20 रुपए दे पॉलीमर बैंक नोट लियाउण दी तजवीज नूं मंजूरी दे दित्ती है। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दस्सिया कि विकसित भारत जीराम जी कानून 2025 तहत मौजूदा माली साल विच 95,692 करोड़ रुपए अलॉट किए गए ने। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर विच विधानसभा चोणां नूं पाकिस्तान वल्लों अपने गैर कानूनी कब्जे नूं लुकाउण दी कोशिश दस्सिया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन
1: EMI गोल्ड लोन स्कीम।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800420223।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।
3: हां जी खोर स्रोता

0: जुड़ गए ने जी साडे नाल।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: कौन बोल रहे हो जी ते कितों बोल रहे हो?
1: मैं सुखपाल सिंह, नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो बोल रहा हूँ जी।
0: ठीक है जी। सुखपाल जी, स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: धन्यवाद जी। जी
0: केड़ा गीत सुनना चाहोगे अज तुसी?
1: तुम सुना दो, हरजीत हरमन जी का गाया हुआ गीत है जट 24 कैरेट का।
0: ठीक है जी। ते की काम काज कर दे हो सुखपाल जी?
1: मैं जी रिटायर मुलाजम हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्विस करता सी एज ए फार्मेसी अफसर।
0: ठीक है जी, ठीक है जी। ते
1: मैं
0: रेडियो
1: सेवा
0: रेडियो सुनने का शौक रखते हो जी?
1: रेडियो तो बहुत सुनता हूँ, 15 साल हो गए लगातार एफएम नाल जुड़े हुए हैं।
0: ठीक है जी, धन्यवाद जी। ते आओ
1: हाँ जी,
0: सुनते हैं तुहाडी पसंद आए गीत।
1: शुक्रिया जी।

0: करते
1: ठीक है जी। ते मींदा की हाल चाल है?
0: हैं। मीना तो भाई बुरा हाल ही है, पैंदा नहीं भाई मीह, और बहुत कसूती लगी पई है, उधर लाइट भी बहुत घट आउंदी है,
1: ठीक है जी,
0: कट
1: चलो
0: कुट लगदे सा, लोड बड़ा वध जांदा है।
1: ठीक है जी, ठीक है।
0: होर
1: बठिंडे
0: भाई घर
1: स्थान
0: परिवार ठीक
1: दर्शन।
0: है?
1: हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक ठाक जी, धन्यवाद
0: सारे
1: कॉल
0: सुने
1: करन।
0: तुहानू
1: हाँ जी,
0: भी भाई, सारी FM दी टीम नूं सत श्री अकाल,
1: सत
0: नवे
1: श्री अकाल
0: श्रोते जी।
1: जी, ते कॉल करन लई शुक्रिया जी। आओ, सुनदे आ, तुहाडी पसंद आए गीत।
0: ठीक है।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
3: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
3: रोहांसी छत्तीसगढ़ से

0: मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया। गीत गांव की धरती में अपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
0: सुंदर प्यारा गीत, टिम टिम तारा जादुई पिटारा, हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
0: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
0: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
1: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
0: बिल्कुल।
1: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
0: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके, और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
1: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
0: जी।
1: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
0: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
1: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
0: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
0: जी।
1: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
1: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
0: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
1: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।

0: नमस्ते बहन जी,
1: नमस्ते दीदी,
2: नमस्ते बहन जी,
3: नमस्ते दीदी,
4: नमस्ते
5: दीदी,
0: नमस्ते बहन जी,
6: नमस्ते शिखा।
7: अरे दीदी जी आप
8: आइए आइए।
7: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
7: जी,
8: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
7: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
7: हाँ ये तो है।
8: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
7: राम राम दादा।
9: हाँ,
7: कैसे हैं आप।
9: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
7: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
7: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
9: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
7: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
0: जी, जी, जी।
9: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
7: जी।
10: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
7: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
2: दीदी लता, दीदी लता।
7: लता?
11: जी दीदी।
7: क्या ये लता?
11: जी दीदी।
7: अरे नहीं।
11: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
7: अच्छा,
11: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था।
7: हुँ?
11: हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया।
7: हुँ?
11: सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
7: अच्छा
11: जी दीदी।
7: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हां
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं? इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है

0: तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
0: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी
0: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
0: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
0: दादा? कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देते हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
2: ठीक है, आ जाना।
3: अच्छा,
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
4: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर

0: पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलु ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पर सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित

0: भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillo clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अलीबाबा 40 चोर में। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा, कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: वीगन।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने ये रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

फिल्म जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़इबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया।

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियां, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।